नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उचरै तै अटल पर तै अटल गुर रामदास कल उचरै तै अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमे रस रसन प्रकाशै मिलत सांत उपजै दुरत दूर अंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हर मग न हुटै संजम सत संतोख सील नाह मफुटै सतगुर प्रमाण बिद नै सिरियो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरै तै अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नवनिध नाम निधान नवनिध नाम निधान रिद सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो।

तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जीव तारन तरन खिन मात्र जा कौ दृश्य धारै शब्द रिद विचारै काम क्रोध खोवै जीव जीअन सबन दाता अगम ज्ञान बखियाता।

0: जिना एक मन एक जिना एक मन एक चित ध्याया सतगुर सौ चित लाए तिन के दुख भुख होमै वड्डा रोग गया निर्दोख भय लिव लाए गुण गाव है गुण उचर है गुण मह सवै समाए नानक गुर पूरे ते पाया सहज मिलिया प्रभ आए मन मुख माया मोह है नाम ना लगै प्यार कूड़ कमावै कूड़ संगरै कूड़ करै आहार बिख माया धन संच मर है अंत होए सब छार कर्म धर्म सुच संजम कर है अंतर लोभ विकार नानक मन मुख जे कमावै सो थाए न पवै दर्ग है होए खुआर सबना रागां विच सो पला पाई जित वसिया मन आए राग नाद सब सच है कीमत कही ना जाए रागै नादै बाहरा इनी हुक्म ना बूझिया जाए नानक हुक्मै बूझै तिना रास होए सतगुर ते सो जी पाए सब किछ तिस ते होया ज्यो तिसै दी रजाए सतगुर विच अमृत नाम है अमृत कहै कहाए गुरमती नाम निर्मलो निर्मल नाम त्याए अमृत बाणी तत है गुरमुख वसै मन आए हिरदय कमल पर गासिया ज्योति ज्योत मिलाए नानक सतगुर तिन को मेलियोन जिन धुर मस्तक भाग लिखाए अंदर तिसना अग है मन मुख भुख न जाए मोह कुटंब सब कूड़ है कूड़ रहया लपटाए अन दिन चिंता चिंतवै चिंता बद्धा जाए जम्मन मरण न चुकई होमै कर्म कमाए गुर सरनाई उबरै नानक लय छडाए सतगुर पुरख हर ध्याए दा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सेव दे हर मेले गुर मेलाए एहो भौ जल जगत संसार है गुर बोहित नाम तराए गुर सिखी भाणा मन्या गुर पूरा पार लंघाए गुर सिखां की हर धूड़ देह हम पापी पी गत पाहे धुर मस्तक हर प्रभ लिखिया गुर नानक मिलिया आए जम कंकर मार बिदारियन हर दर्ग है लय छडाए गुर सिखा नोसा बास है हर तुठा मेल मिलाए गुर पूरै हर नाम दिड़ाया जिन विच हो भरम चुकाया राम नाम हर कीरत गाए कर चानन मग दिखाया होमै मार एक लिव लागी अंतर नाम वसाया गुरमती जम जोहे न सकै सचै नाए समाया सब आपे आप गुरमती जम जोहे न सकै गुरमती जम जोहे न सकै सचै नाए समाया सब आपे आप वरतै करता जो भावै सो नाए लाया जन नानक नाव लए तां जीवै बिन नावै खिन मर जाया अंतर मन अंतर होमै रोग भ्रम भूले होमै साकत दुर्जना नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख न लभई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सतगुर नाम दड़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गुल गोले सलोक महला पंजवा सलोक महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद रत्ते सेई जे मुख ना मोड़न जिनी संजाता साई झाड़ झाड़ पवदे कच्चे बिरही जिना कार ना आई धनी विहूणा पाट पटंबर पाही सेती जाले धूड़ी विच लुड़ंदड़ी सोहां नानक तै सह नाले गुर कै सबद अराधिया नाम रंग बैराग जीते पांच बैराइया नानक सफल मारू एहो राग जां मूं इक ता लख तो जीती पिनने दर कितड़े बामण बिरथा गयो जनम
1: बामण छोड़ा
0: बामण बिर बामण बिरथा गयो जनम जिन कीतो सो विसरे सोरठ सो रस पीजिया सोरठ सो रस पीजिया कबहू न फीका होए नानक राम नाम गुण गाई है दर्ग है निर्मल सोए

रंग अपार को लगा रंग अपार को ना उतारई गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारई नानक नाम निदान हृदय उर हारई करे सो चंगा मान दुई गणत लाहे अपनी नदर निहाल आपे लै हो लाए जन देहो मति उपदेश विच हो भरम जाए जो तुर लिखिया लेख सोई सब कमाए सब कछ तिस दै वस दूजी नाहे जाए नानक सुख आनंद भए प्रभ की मन रजाए गुरपुरा जिन सिमरिया सेई पए निहाल नानक नाम आराधना कारज आवै रास पापी कर्म कमाव दे कर दे हाए हाए नानक ज्यो मथन मा दानिया त्यो मथे धरम राए नानक नाम ध्यायन साज नाम ध्यायन साजना जन्म पदार्थ जीत नाम ध्यायन साजना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवहै की तो भवन पुनीत खुबड़ी कुथाए मिठी गलन कुमंतरिया नानक सही उबरे जिन्ना भाग मथाहे सुतड़े सुखी सवन सुतड़े सुखी सवन जो रते सह आपने प्रेम सुतड़े सुखी सवन जो रते सह आपने प्रेम विछोहा धनी सौ अठे पहर लवन सुतड़े असंख माया सुतड़े असंख माया झूठी कारणे नानक से जागन जे रसना नाम उचारणे मृग तिसना पेख भुलणे वुठे नगर गंधर्व गंधर्व जिनी सच आराध्या नानक मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ समरथ पुरख अपार जिस है उदारे नानका सो सिमरे सिरजन हार दूजी छोड़ कुवाटड़ी इकस सो चित लाए दूजे भावी नानका वहन लुड़ंदड़ी जाए ते हटड़े बाजार सौदा करण बन जा रहा ते हटड़े बाजार सौदा करण बन जा रहा सच वखर जिनी लद्या से सचड़े पासार सच वखर जिनी लद्या से सचड़े पासार पंथा प्रेम ना जानई भूली फिरै गवार नानक हर बिसराए कै पौदे नरक अंधियार माया मनहो ना वीसरै मांगै दम्मा दम सो प्रभ चित न आवई नानक नहीं करम तेचर मूल ना थुड़िंदो जेचर आप कृपाल सबद अखुट बाबा।

ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेति मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दोता गावहो हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओहो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यो मनहु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब किच है दिस देहे सो पावे सदा सिपत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहेब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटोह जिस दिया एह वडियाया कह नानक सुनहो संतो शब्द तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सपागै सबद वाजे कर।

जे अनद सुनहो वट पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संत

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सदगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक।

हो। गुरुमुख सदा सलाहिया सच्चा वे परवाहो रहाओ। दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दाज मरन जमपुर बदे मारी है वेला ना लाहन। गुरमुख

ही मनमुख मुग्ध करन, मोह काले तिन निंदका नरके कोर पवन। ए मन जैसा सेव है तैसा होव है,

होवै कितै परथाए। ओए अमृत भरे भरपूर है ओना तिल न तमाए। गुणकारी गुण संगरै अवरा उपदेसेन। सेवड़ भागी जे ओना मिल रहे अन दिन नाम लयेन। देसी रिजक संभाहे

ईश्वर त्रिग जीवन संसार नदर करे ना विसर गुरमति विचार सतगुर मेले ता मिल रहा साच रखा उरतार मिलिया होए ना विछुड़ गुर कै हेत प्यार पिरसा लाही अपना

एक सस्यों लिव लाए हमें मेरा छड तू ता सच रह समाए सतगुर नो मिले सिपाहेरा सच्चे शब्द लगन सच मिले से ना विछुड़ दर सच्चे दिसन से भाई से सज्जना जो

सौ मेरा रंगूला रंगे सहज सुभाए, कामण रंग ता चढ़ जा पिरके अंक समाए, चिरी विछुन्ने पी मिलन जो सतगुर

गुर पार्वती माई जे हाउ जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीरथ नावा जे तिस पावा विन भाणे के नाए करी जेते सिरठ उपाई वेखा विन कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर मानिक जे एक गुर की सिख सुनी मत विच रतन जवाहर मानिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई।

निर्गुण गुण करे गुणवंतया गुण दे तेहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोय करे सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया धरत धवल आकाश सुनिया दीप लोह पाताल सुनिया पोहे ना सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया ईसर ब्रह्मा इंद सुनिया मुख साला हनुमंद।

सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सरा गुणा के गाह सुनिया सेख पीर पातिसाह।

असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच मल भख खाहे असंख निंदक।

ओंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण

तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार, भरियै हथ पैर तन देह, पानी धोतै उत्तर सोखेह। मूत पलीति कपड़ होए, दे साबून लइयै ओह धोए। भरियै मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग।

गोविंद। आख है ईसर, आख है सिद्ध, आख है केते कीते बुद्ध, आख है दानव, आख है देव, आख है सुर नार मुन जन सेव, केते आख है आखन पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, एते कीते होर करेहे, ता आख ना सकह केई के, ही के।

रह न रजाई। मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह बिभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत।

अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकि रिद्ध सिद्ध अवरा साद संजोग वे जोग दो एकार चलावह लेखे आवह भाग

जुगत वे आई। तीन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबान। जेवत

ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तथा नाद विनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ता किया गला कथिया ना जाहे जे को कहै पिछै पछुताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध।

0: प्रभ के सिमरन हर गुण बानी, प्रभ के सिमरन निचले आसन, प्रभ के सिमरन अनहत चुनकार, सिमरे से जन जन को प्रमया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए,
1: हर सिमरन
0: पै सद जति दाते,

0: पंगत पाई
1: छूटत नहीं कोट लख बाही
0: नाम जानते पार पराई
1: अनक बिगंजय आए संगारे
0: राता

0: साध के संग इहा उहा सेला, जो इच्छे सोई फल पावे,
1: साध के संग ला बिरता जावे,
0: पार ब्रह्म साध रिद बसे,
1: नानक उदरे साध सुन बसे,
0: साध के संग सुनो हर नाव,
1: साध संग हर के गुण गाओ,
0: साध के संग न मन ते बिसरे,
1: साध संग सब पर निस्तरे,
0: साध के संग लगे परम मीठा,
1: साधु के संग काट काट मीठा,
0: साध संग पे आज्ञाकारी,
1: साध संगत पे अमारी,
0: साध

पात्रे रूप न पेखे नेत्र करना सुने काहू की निंदा गुर परसा बिखिया पर हर इंद्री जित पंच दोख ते रहत वैसनो सो जिस उपर सो प्रसन्न कर्म कर दो बेने कर्म

0: कहा वह
1: तान पूम का जो करे गमान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे तनवंता होए कर गरबावे बोल।

कर कृपा जिस अपने नाम लाए रूप सत जाका सत स्थान करतूत सत सत जाकी बाणी

इचपनी सरदा सा पूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए सुख बिसरे जे काल न पाने सुख बिसरे जिन सब कई दिया सुख बिसरे जे अगन में राखे सुख बिसरे जे बिकते काढ़े गुरपुरे तत एह बजाया साजन संत करो एह काम सिमर सिमर सिमर सुख पावो भक्त पाए तरिये संसार

जब आपे आप अपनी ज्योत राय अपन चल ताप करने हारे अविनाशी सुखे अपने आसन जब पूर्ण करता प्रसोए जब अवगित गोचर प्रवेका जब नाथ निरंजन गोचर गा दे अपने आप आपी उचर जा जय निर्मल पुरख पुरख पतो।

0: चल मोर तन पापर कासम तो जकहि जे तर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रैन कहत
1: सर्वनाम कथे कवन कर्म ना बन समत
0: चंग प्रयाद छंद नमस्तवंग अकाले।

0: समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बेपुते
1: कलंकन बिना ने कलंकि स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे
0: नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे।

परम रूप पनीत मूरत पूरण पुरख अपार सर्व विश्व वरचे उस जंबम गड़न पंजन हार अंग राग ना रंग जाके जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन।

0: के अवधूत बने के बेपूत करने
1: के राजन परवाह के धर्मन तो जाए के अशोक बने के सर्वा बने
0: के जतरन कृत्रि है के शतरन क्षत्रि है के ब्राह्मण स्वरूप।

0: केसरबत्तर राजे केसरबत्तर साजे
1: केसरबत्तर दीना केसरबत्तर लीना केसरबत्तर जाहो केसरबत्तर पाहो
0: केसरबत्तर देसे केसरबत्तर पैसे केसरबत्तर काले केसरबत्तर पाले
1: केसरबत्तर हंता केसरबत्तर गंता केसरबत्तर पेखी केसरबत्तर पेखी
0: केसरबत्तर काजे केसरबत्तर राजे।

त्रिपुगत स्वरूप है, अछिज है, अशूत है, के नरकन पर नाश है, पृथ्वी परवास है, निरुक्त सदा है, बेपुक्त प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, पर जुगत

0: ब्रह्मंड सह खल खंड सह पर ते पर है करुणा कर है। अमृत अमृत है करुणा कृत है अकृत अकृत है तरनी त्रित है।
1: परमेश्वर है अकृत अकृत है अमृत अमृत है
0: अजबा कृत है।

0: श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे।
1: वीर बार बड़े बड़े आर विचार सार की तार बजैया
0: तोरत देश मिलिंद मवासा।

0: प्रसन्न फिरे जग सतर सबे अब लोक चपेंगे
1: मानवेंद्र गजेंद्र नराज अब जान पर लोक राज करेंगे
0: कोट इस नानक जाय दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे
1: ब्रह्मेश्वर विशन सचिव पदार्थ बसे जब फास भरेंगे
0: जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फेर न देह तरेंगे
1: जो दो लोचन बूंद के बैठ रहे हो ध्यान लगायो
0: नाथ फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो
1: बास की ओ बख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे

0: आवो संत प्यारे ओ अकथ की करे कहानी।
1: करे कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाईए।
0: तन मन तन सब सौंप गुरु को हुकम मन्ने पाईए।
1: हुकम मन्ने गुरु केरा गावो सच्ची बाणी।
0: कहे नानक सुनो संतो कथियो अकथ कहानी।
1: ए मन चंचला चतराई किने ना पाया।
0: चतराई ना पाया किने।

0: एहो सोहिला सबदो सुहावा, सबदो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया।
1: एहो तिनके मन वसिया जिन तुरो लिखिया आया।
0: एहि पचमिट मेरे करे गल्ला गली किने ना पाया।
1: एहे नानक सबद सोहिला सतगुरु सुनाया।
0: पवित होए से जना जिनी हर त्याया,
1: हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया।
0: पवित माता पिता कुटुंब सहत सिओ पवित संगत सबाइया।
1: दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया।
0: कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया।
1: सहज ना उपजै बिन सहज सहसा ना जाए,
0: ना जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए।
1: सहस जियो मलीन है कि संजम तोता जाए।
0: मन तो वो शब्द लागो हर सिओ रहो चित लाए।

0: जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी जन्म रतन जिन खटिया भले सेवन जारे
1: नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले
0: जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले
1: के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मा समाले
0: आप छड सदा रहे परने गुर बिन अवर न जाने कोए
1: कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए
0: जे को गुर ते वे मुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे
1: पावे मुक्त ना होर था कोई पुछो पवे किया जाए
0: अनेक जूनी पार में आवे बिन सतगुर मुक्त ना पाए
1: फिर मुक्त पाए लाज जानी सतगुरु शब्द सुनाए
0: कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए
1: आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी
0: बाणी ता गावो गुरु केरी बाणी।

0: करे रसना कहा कशु ना जानी कहे नानक सतगुर बाजो होर कच्ची बाणी
1: का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ
0: शब्द रतन जित मन लागा।

0: छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया।
1: ये माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया।
0: कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी।

0: सचो त्यावे जात उदपावे गुरमुख जिना बुझावे।
1: इहो सत्सवना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावे।
0: कहे नानक सच सोहला।

अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निद आवै ताए सब थाई होई सहाए दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होई सहाए दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाह। पंजा प्यारियां चौहा साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनदिठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाह। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां नाल निभाही तिना समूह शहीदां सिंघां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाह। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाह। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाह। बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाह। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो समूह गुरद्वारियां गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मान नेताणियां दे तान नेउटियां दी ओट धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन चरण कमला पास अरदास बेनती है महाराज आप जी दी महान कृपा दा सदका अमृत वेले तो लैके आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर सिख संगता ने रल मिलके श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप अते नितनेम दियां बाणियां दे जाप कीते हन महाराज बाणी पढ़दियां तो समुचियां सेवावां निभाउंदियां तो आप जी दे सेवकां पासों होईयां भुल्लां बख्श लैणियां अगे वास्ते सुमत बख्शिश करनी पढ़ी सुनी बाणी दा फला देश दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा दर आई संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा अपने दर ते प्रवान करनी सब नू अपने

संत हो राम नाम निस्तरिया, उठत बैठत हर हर त्याइया, आन दिन सुकृत करिया रहाओ।

0: कछु न होत उपाय।
1: कहो नानक अब ओट हार,
0: गाज जो हो सहाय।
1: बल हुआ बंधन छुटे,
0: सब किछ होत उपाय।
1: नानक सब किच तुमरे हाथ में,
0: तुम ही होत सहाय।
1: संग सखा सब तज गए,
0: को न निबे हो।

रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी बाए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सह सेती बन वजियां बधाइयां राग रतन परिवार परिया शब्द गवनाइया शब्द उता गावो हरी केरा मन जिनी बसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हरनाले हरनार रहो तू मन मेरे दूसा विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार सब सवारना सबना गल्ला समर्थ स्वामी सो को मनो बसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले साचे सहवा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब कुछ जित पावे सदा सिव सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनके मन बसिया बाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मन आए बसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुरबान किया गुर बिठो इस दिया वड्याई आ कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार हो वाजे पंच तरस पाके कर पाके शब्द बाजे कला जित करता हरिया पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तु जिनको से नाम हर के लागे हे कहे नानक तै सुख होआ तित कर आनंद बाजे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुन ते पनीत कह ते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्हा तूरे सुन ते पनीत कह ते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे।

जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल होई है नित ध्याई हर पुरख निरंजना रहाउ जह हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी वड भागी हार जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जप हर भव जल तरना जह हर सिमरन भया तह उपाद गत कीनी वड भागी हार जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जप हर भव जल तरना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी जिन्हां दे पावन पवित्र चरणां दराब संगतां ने अमृत वेले दे सजे दीवानां दीआं हाजरियां भरियां ने श्री नाभ कंवल राजा साहिब तिन्हां दी बरसी दे संबंध विच कैलगिरी दीआं इलाके दीआं संगतां वल्लों श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ होए गुरद्वारा साहिब विखे जिन्हां दे भोग पाए गए गुरु साहिब दे चरणां विच अरदास होई है सच्चे पातशाह ने हुक्मनामा बख्शिश कीता है। चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज बख्शिश करदे पए ने तनासरी राग दे अंदर। एक वारी सारी संगत आखो सतनाम श्री वाहे गुरु जी। इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर जाकै वस है काम तेना। ओ परमेश्वर वाहेगुरु अकाल पुरख जेड़ा सारियां ही इशावां पूरियां करदा है जेड़ा सुखां दा खजाना है जिदे वस दे विच काम तेन गऊ है। सो ऐसा हर ध्याई है मेरे जी अड़े ता सर्ब सुख पावे मेरे मना।

दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोबिंद कंठ लाए अवगुण सब मेटै दयाल पुरख बखसंद जो मागह ठाकुर अपने ते

0: कामे करने कामे हो याद रखने सारे में करने काम हो याद रखने सारे याद रखने सारे याद रखने सारे हो
1: आर के तेजे ने कोई श्यांक ठाणे ने पुलिस कठी करके करनामे पिंड नूं आण के घेरा पा लिया। ये तिने सूरमे करनामे के घर विच हन। जदों गड्डियां उधर पिंड वल नूं मुड़ियां कुछ कुत्ते भी भौंकण लगे। इन्हें मां ने इस घर एक औरत सी माता जिन्हें अपने दोते नूं कहा भी उत्तर कोठे चढ़ के वेख भला की हो रहा कौन है। उन्हें वेखा तो दूर तक गड्डियां ही गड्डियां। वो थले उतर आया माता ने उत्ते जाके वेख्या तो उन्हें आण के पप्पू गोरे नूं दलजीत सिंह नूं प्रेम सिंह दस्या कहण कि पुत्रा हुण पुलिस आ गई है। उन्होंने प्रशादे पानी का प्रबंध हो रहा सी वो विच ही रह गया। कहने हुण कीता गया उधरों गुरद्वारा साहब विच अनाउंसमेंट हो गई तुसीं भी बड़ी बार सुनिया हन भी पिंड नूं पा लिया पुलिस ने घेरा पिंड दी होणी आ तलाशी जां घर विच कोई बजुर्ग रह जावे बाकी सारा परिवार फलानी ग्राउंड सरकारी स्कूल विच कट्ठे हो पिंड दी तलाशी होनी है। सारा पिंड स्कूल दी ग्राउंड विच चला गया। इस घर विच एक बिरध माता रह गई बाकी परिवार इन्हों का किसी अंगा साका च विआह सी उत्थे गए सन। एक नौ सी घर

दुख न लागै, कर एक त्याव है ता फल पाव है, जित सेवै भौ भागै। ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो, मरण मुनसा सूर्या हक है।

कुदरत बिचारे धारण तारे जिनकी आसो जाने आपे वेख्या आपे बूझै आपे हुक्म पछाणे जिन किच किया सोई जाने ताका रूप अपारो नानक किसनो बाबा रोई बाजी है ए संसारो वड़हंस महला पहला दखनी सच सिरंदा सच्चा जानी है सचड़ा परवदगारो जिन आपी ने आप साजया सचड़ा अलख अपारो दोयपुड़ जोड़ विछोड़ियन गुरबिन घोर अंधारो सूरज चंद सिरजियन एहनिस चलत विचारो सचड़ा साहिब सच तू सचड़ा देह प्यारो रहाओ तुद सिरजी मेदनी दुख सुख देवन हारो नारी पुरख सिरजै बिख माया मोह प्यारो खाणी बाणी तेरिया देह जिया आधारो कुदरत तख्त रचाए।

काल व्यापै दूजे भाए विकारो जम मार्ग पंथ न सुजई उजड़ अंध गुबारो वा ना जल लेफ तुलाइया ना भोजन प्रकारो वा भोजन पाओ ना ठंडा पानी ना कापड़ सी गारो गल संगल सिर मारे उबो ना दी सह घर बारो इबके राहे जमन नाही पछताने सिर पा

बंद चलाया। बाबा रोवो जे किसै रोवना, जानी अड़ा बंद पठाया है। लिखियड़ा लेख ना मेटी है, दर हाकारड़ा आया है। हाकारा

गुणसार संभाले को मरे न मुया नाले। नानक जुग जुग जान सी जाना रोवे सच संभाले पै रोवे गुणसार संभाले को मरे न मुया नाले। नानक जुग

साहिब जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला नौवा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन को नानक हर भज मना जेह बिद जल को मीन बिखियन स्यो काहे रचियो निमख न होहे उदास को नानक भज हर मना परै न जम की फास तरनापो इउं ही गयो लियो जरा तन जीत कह नानक भज हर मना औध जात है बीत बिरद भयो।

राम सब सुख दाता राम है दूसर नाहे न कोए कहो नानक सुन रे मना तेह सिमरत गत होए जे सिमरत गत पाई है तेह भजरे तै मीत कहो नानक सुन रे मना।

निस्दिन जो नानक भजै सफल होहे तेह काम। जिहबा गुण गोविंद भजो करन सुनो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना परै न जम कै धाम।

जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख देह। माया कारण ताव ही मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हार भजन बिरथा जन्म सिरान। जो

कौ नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म भरमत फिरियो मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निर्भय पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहयो मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक।

होए जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमर तेह पूरन हो वह काम। झूठे मान कहा करै जग सुपने ज्यों जान। इन मैं कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को बिन सह छिन मैं मीत। जे प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जे घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जेह प्राणी कै नाहे मन। जैसे

किन जपियो गुरमंत, राम नाम उर मैं गहियो, जाके सम नहीं कोए, जेह सिमरत।

पयो जिसका सब सधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका हुए उदारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित राखुर तारो।

एक संग पंच बरंगन संग अलाप है आठो नंदन प्रथम राग भैरो वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुन्याकी गावै बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए भैरो की पंचो नारी पंचम हरखद साख सुनावै बंगालम मद माध बगावै ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गावै गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पंचो थाप है गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पंचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा प्रबल चंड कौशक उबारा खौखट औ पौरा नद गाए अष्ट माल कौशक।

तलियो रामा, कमल कुसुम चंपक के नामा, गौरा ओ कान रख लियाना, अष्टपुत्र दीपक के जाना। सब मिल श्री राग वह गाव है, पांचो संग बरंगन लाव है, बैरारी करनाटी तरी, गवरी गाव है आसावरी, तेह पाछे सिंध भी अलापी, श्री राग स्यो पांचो थापी, सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर, अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर, खष्टम मेघ राग वह गाव है, पांचो संग बरंगन लाव है, सोरठ गोंड मलारी तुनी, पुन गाव है आसा गुनगुनी, ऊचे सुर सूहो पुन कीनी, मेघ राग स्यों पांचो चीनी, बैरा धार गज धार के दारा, जबली धार नट्यो जल धारा, पुन गाव है।

गाए संग रागनी तीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राम कली साध एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर भाणा गुर पाया गुर जावै हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जन है केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुर मिलाया धन धन कह साबाश जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरे हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबाश जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल में लावे तुसी पुत भाई परिवार।

गुर ते अमरदास राम दासै हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरी है घर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी।

तेग फतेह, बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोलबाले बोलो जी।

जिस आसन हम बैठे केते बैस गया सो कह टल गुर सेवी है एहन इस सहज सुभाए दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसोह कुरसोह झटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां द शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा हो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सूही महला पंजवां सिमृत वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां सिमृत वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां नाम निदान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै रहाओ मोह बाद अहंकार

मेरी मेरी तार बंधन बंधिया, नरक स्वर्ग अवतार माया तंदिया, सोदत सोदत सोद तत बिचारिया, नाम बिना सुख नाहे सर पर हारिया, आवह जाहे अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते, जिनको भये दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जाप लया, खोजह कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझ

दिन रात नानक चाओ एहो विसर नाही दातार अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी सरदार दलजीत सिंह जी गिल उन्हां दी अंतम अरदास विच शामिल होने लई गुरु चरणा विच जुड़ बैठे हो। अरदास समागम दी हुक्मनामे दे नाल संपूर्णता हो चुकी है। सरदार दलजीत सिंह गिल होरां दे समूह परिवार वालों आई हुई संगत दा कोटान कोट वार धन्नवाद। और तुसी परिवार दे इस दुख दे समय दुख नूं वंडाउण लई इस अंतम अरदास समागम विच शामिल होए हो। गुरु पातशाह रहमत करे परिवार वालों नाल ही बेनती है कि आई हुई सारी संगत ने गुरु के लंगर जरूर लोड़ अनुसार छक के जाने ने। सरदार दलजीत सिंह जी गिल उन्हां दे सपुत्र सरदार सरबजीत सिंह होरी अपने समय दे एक बहुत वधिया कबड्डी खिडारी हो रहे ने। मैनू बाद विच वीर गुरप्रीत सिंह गुक शेरपुर खुरदवाले ने दस्या कि सरबजीत सिंह जिहड़े बुग्गीपुरे दी कबड्डी टीम विच बतौर रेडर खेडदे हुंदे सन, ते मैनू याद है मैं इन्हां नूं खेडदे वी वेख्या। जूड़े वाले केसां वाले उदों कोई कोई विरले विरले खिडारी हुंदे सन, ते सरबजीत सिंह होरां दे जूड़ा हुंदा सी, बहुत वधिया प्लेयर सन। सरदार दलजीत सिंह दी गिल वह इस पक्षों भी भागशाली सन कि उन्हां दा सपुत्र एक स्पोर्ट्समैन सी। गुरु पातशाह रहमत करे वीर सरबजीत सिंह होरां वल्लों समुचे परिवार वल्लों तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। और नाल ही मैं गुरद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी वल्लों गुरद्वारा साहिब के समुचे स्टाफ वल्लों परिवार नाल हमदर्दी जाहर करदा होया गुरु पातशाह दे चरणां विच परिवार की चढ़दी कला लई अरदास करदा हाँ। आओ सतसंग जी, आप जी नूं बेनती है कि हुण तुसीं मत्था टेक के बाहरों काउंटर तों कड़ा प्रसाद प्राप्त करना है, ते नालों नाल दीवान दी जो कार्रवाई इस तरह चलेगी। हुण सोदर दी चौंकी लई संगत दे दर्शन करन लई स्टेज उपर सुशोभित हो चुके ने भाई तरलोक सिंह जी पौंटा साहिब वाले। आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन सरवण करवाउणगे। और संगत दी जानकारी हित यह दसना भी जरूरी है कि अज गुरद्वारा साहिब विखे पिछले लगभग 40 दिन तो चल रहे पाठ बोध समागम की संपूर्णता भी है। अज का दीवान विशेष होगा, आप जी ने वध चढ़ के हाजरी भरनी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी के सहज पाठां के भोग पाए जाएंगे। 6:15 तो लगभग 9 बजे तक यह प्रोग्राम चलेगा। सारी संगत का धन्नवाद। दस रहे पासों सेवावां निभाउंदियां होईयां बेअंत प्रकार दियां भुल्लां लई खिमा जाचना है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

हरे गावन तदनो जते सते संतोखी गावन तदनो वीर करारे गावन तदनो पंडित पढ़न रखीश्वर जुग जुग वेदा नाले गावन तदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग माछ पयाले गावन तदनो रतन अपाए।

भगत सलाहन तुद जी। हरे अनक अनेक अनंत तेरी अनेक करहे हर पूजा जी। तप तप है जप है बेअंत तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत सास्त जी। कर किरिया खट कर्म करंता।

सहज ही हर नाम समाया, तुम आपे करता तेरा किया सब होय, तुझ बिन दूजा अबर न कोय, तू कर कर वेख है जान है सोय, जन नानक गुरमुख प्रगट होय, आसा महला पहला तित सरवरड़ पहिले निवास।

सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज करदै करियै, सबै रन कौ आज संगरियै, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अबर न त्याओ, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है, आप हाथ दा मुझे अबरी है, मरन काल का त्रास निवरी है, पूजो सदा हमारे पच्छा, सिरिय तुझ जो करे ओ रिछा, राख ले हो मोहे राख नहारे, साहिब संत सहाय प्यारे।

काल पाए कर बिसन परकासा सकल काल का किया तमासा जावन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जग

समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवक।

जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान जब उद करख करा करतार प्रजा तरत तब देह अपार जब अकरख करत हो कब हो तुम मैं मिलत देह तर सब हों।

पयो जिसका सबस आधार, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदार। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उरतारू।